कारम शिखया दिशेत् वेकारम नेत्रयोर्युञ्जन् नकारम सर्वसंधिषु मकारम अस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्।

यक्षरक्षः भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारेन त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टि दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितः भीमस्वनोरेर्हृदयानि।